0: भगत ग्राम भीतर दी तक रुयु
1: गलक मन एक तक जयान वही आ रे गमन एक तक ने लादे तक नहीं

0: आज तुम कुवाव ही।
1: वो तो अंबुला से मिशी बना दी रे। आज अच्छा तो नगमा ना अपन बाकी तो आज यो हम दे कुल कुल बड़ा बिटे पिलोट। ये तो और जाने ना अपने रात्रि चैन आपको तो कुनी सिनापन अब बार ना चुका ना चुके चैन अली बेजान रखते ना।